मूर्छ अनुज कर दे करिए सब वैरण कहो आज संगरिए पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा तो मैं छाड़ कोई अवर न त्याऊ जो वर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाद है मुझे अवरी है मरण काल का त्रास निवरी है हो जो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु जू करियो हर अच्छा राख लियो मेरा खनहारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर दस्कंता काल पाए ब्रह्मा भक्तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का की आत्मा सा जवन काल जोगी सब कियो भेद राज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जशन पजायो आद अंत कै अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तुसी को हमारी सकल प्रजाजन आप सवारी शिवकुन को सब गुण सुख दियो सतरन को पल मोह बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछांत चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने कट कट के पट पट की जाने जाबुद करख करा करतारा प्रजा धरतव देह अपारा जब आ करख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ जेते बदन सृष्ट सब तार है आप अपनी बूझो चार है तुम सब ही तेरा तिनरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका

सदासिव निरंकार का चीनतन पिव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत पिन पिन तोयतेती तुमरा लखाना जाय पसारा केवद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कई पूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उत कुज खान बहर रचदीनी कहूं फूल राजा हवे बैठा कहूं सिमट पयो शंकर कैठा सिगरी सृष्ट दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप सुजंपव अवर अच्छा मेरी तुम करो सिख अवार असिख संगरो दुष्ट जेती उठ बतुत पाता शकल मलेश करो रण काता जी अस्तु तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हवे मरे उर्क जबन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक वार ते आए है ताके काल निकट ने आए है रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट ट्रैं तत्काला कृपा दृष्ट तन जाए निहर हो ताके ताप तनक में हर हो रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट शाह स्वशक्य न कोई एक बार जन तो वह संभारा काल फास्ते ताहे वारा जिनर नाम तिहारो कहा दर्द दोस्त दोख तेरा खड़ग केत में शरण तिहारी आप खास दैलि हो वारी सर्व ठौर में हो सहाई दुष्ट दोख ते लिहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण शुभ राता किलविक शक्ल देह को हरता दुष्ट दुखियन को शह करता श्री अस्तुज जब पहे दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला।

0: क्या बात है, कमाल का संगीत। मुझे लग रहा है हेमंत का था। अच्छा, प्यार अली भाटिया का पहला मैसेज आ गया, बहुत अच्छे। अपने आए पहले देखो, फिर दूसरों की बुराइयां करो। वो है न्यू मंथ है, 1 जुलाई, और रूपल कहती हैं वन लाइन, साल गुजरते जाएंगे हम प्यार में जलते, प्यार में मरते जाएंगे। साल गुजरते जाएंगे हम प्यार में जलते जीते, अब प्यार में जीते हैं कि जलते जीते हैं, और प्यार में मरते, हाँ अगर जीते हैं तो मरते हैं। ओके रूपल, देखते हैं क्या करते हैं इसके साथ। और कहते हैं ऑनेस्ट रिलेशंस आर जस्ट लाइक वाटर, नो कलर, नो शेप, नो स्पेस, बट स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, सना और अमीर अली राणा, विशिंग यू ऑल अ वेरी गुड मैन। दूसरों की इज्जत उछालने से पहले अपने अपनी परवरिश देख लेना। परवरिश ही है, टी लिख दिया है, क्योंकि जबान की गंदगी अक्सर घर का पता देती है। क्या बताए, घर का पता बता देती है, जो है ना जबान की गंदगी वो बताती है कि आपकी परवरिश कैसे हुई है। अमीर अली राणा, द कंट्री इज डैश, ओके, लेकिन वो जंतर मंतर पे कौन बैठा है? मंजुला गोरसिया फर्स्ट कॉलर टू टेल मी द कंट्री, सेकेंड कॉलर अमीर अली राणा कंट्री, लेकिन वो जंतर मंतर पे बैठने वालों का भी नाम बता दें। सोनल मोदा, एक ही आधा आंसर दिया है। और भरत गंगाराम, क्या बात है, कहते हैं कि पता है क्या, हाँ इन्होंने मुझे पार्टी का नाम दिया। फर्स्ट कॉलर भरत गंगाराम है जिन्होंने पार्टी का नाम दिया, जो वहाँ बैठे हुए हैं जंतर मंतर में। इतनी धूप है, इतनी गर्मी है, लेकिन वो बैठे कौन है, मैंने आपसे पूछा है।
1: जहाँ इज्जत ना मिले वहाँ जाना क्यों है, जो भरोसा ना करे उससे मनाना क्यों है, खुददारी भी जरूरी है इस दुनिया में, इसलिए दोस्तों हर बार टूट कर यूं मुस्कुराना क्यों है। शुक्रिया, सुबह का प्यारा सलाम, सलमा आहमद किसोमो।
0: या बिल्कुल सलमा, दैट्स गुड जो आपने कहा है कि अगर पता है कि वो नहीं मानेगी तो मनाने की कोई जरूरत भी नहीं है। अच्छा, वेलकम 1st of July, नीला शेत आपने कहा है, साथ कुछ नहीं है। ओके, इन एन एवरेज लाइफ टाइम डिड यू नो ह्यूमन स्किन कंप्लीटली रिप्लेसेस इटसेल्फ 900 times। ये जो आपकी त्वचा है ना बदलती है, ये आपका जिस्म खुद ये काम कर रहा है। स्किन जो जिल्द है आपके जिस्म पर, वो 900 बार आपकी जिंदगी में बदलेगी, याद रखिएगा। ये कहा है शमीम फ्रॉम साउथ अफ्रीका ने। रसिला, यस आपने बता दिया है कौन है, और नहीं नहीं नहीं, ये पहला नहीं है, ये मुल्क नहीं है, और आपने हाँ पार्टी का नाम आपने दिया है, लेकिन लेटर्स में पूरा नाम दीजिएगा। पूरा नाम क्यों नहीं रसिला? मंजुला विश्वकर्मा ने पूरा नाम दे दिया है, टू गुड। और आपने कहा है अमरीका, नहीं अमरीका नहीं मना रहा आज 159th इंडिपेंडेंस डे, नो। अच्छा, इंडिपेंडेंस डे भी नहीं है मेरे ख्याल से, वो है उनका फाउंडेशन डे। अच्छा, आप हैं मंजुला गोरसिया, मंजुला गोरसिया को दोनों आंसर मिल गए हैं, वंडरफुल। मिसेज धंजल दोनों आंसर्स लेकर आई हैं। टीना, बिल्कुल करेक्ट, दोनों करेक्ट। अब जब औरतें ले लेना, उठा लेना कोई जिम्मा, तो साथ ही द प्रोविंसेस दैट वॉन्ट टू सेपरेट आर दीज, बिल्कुल। लेकिन जंतर मंतर में क्या हो रहा है? रूपल, करेक्ट आंसर है आपका, लेकिन वो मुल्क कौन सा है, विच कंट्री, कौन सी कंट्री है जिसको 159 साल हो गए हैं वजूद में। और एमएल विश्वकर्मा ने क्या कहा है थोड़ी देर में।

अच्छी थी हंसी बहुत खूब अब देखते हैं कि लखबीर क्या कहती हैं लखबीर ने कहा है पार्टी का ये नाम है बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर लेकिन मुल्क का नाम आपने नहीं बताया रसिला ने दोनों करेक्ट दिए हैं रसिला शाह अमीर अली राणा नो ये ब्लॉक पार्टी नहीं है अच्छा और कहा है जी एमएल विश्वकर्मा ये कंट्री लाइबेरिया नहीं है लेकिन आपका पार्टी का नाम करेक्ट है सलमा द ओके आपने मुल्क का नाम तो ठीक दिया लेकिन पार्टी जंतर मंतर में कौन सी बैठी है मैंने वो पूछा है रंजन विनोद आपने सबको नमस्कार किया मंजुला विश्वकर्मा जी हाँ आपने दोनों आंसर करेक्ट दिए हैं और दिनेश और शोभना आपने कहा है कि दिस कंट्री इज सेलिब्रेटिंग 159 ईयर्स ऑफ नेशनहुड ओके और जो बैठे हुए हैं वहाँ वो कौन है वो नहीं बता सके आप कि वो पार्टी कौन सी है ओके ठीक है ट्राई करें और लखबीर थैंक यू चलिए सामिन मैं आपको थोड़ी देर में आंसर भी दे देती हूँ क्योंकि इतना वक्त नहीं था हमारे पास छोटे छोटे ये क्वेश्चंस थे

0: प्रवीण जी, चूड़ी में नहीं मेरा दिल, ये गाना फिल्म गैम्बलर का है, जिसको लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने गाया है, जिसको नीरज ने लिखा है और जिसकी धुन ST बर्मन ने बनाई है। गाना अच्छा लगा सुनाने के लिए, आपका शुक्रिया।
1: ओके, अब सलमान ने भी कुछ कहना था कि जो लिबरल पार्टी है, नहीं मैं कनाडा की पार्टी की नहीं बात करी, जंतर मंतर में बैठे हैं ना, तो वो इंडिया में बैठे हुए हैं, इसका मतलब वो भारतीय पार्टी होगी। और यहाँ पर कल्पना बिल्कुल करेक्ट, दोनों आंसर्स करेक्ट। पहला आंसर था कनाडा, ठीक है, 159 साल, और दूसरा आंसर था कॉकरोच जनता पार्टी, जो जवानों की पार्टी है, हैरत अंगेज तौर पर पार्टी बनी है कॉकरोच पार्टी इन इंडिया। ये सटेरिकल कहते तंज के साथ नाम दिया गया है। तो ये दोनों तो हो गए काम। पहले हम तलत महमूद की आवाज में ये ब्यूटीफुल सॉन्ग देंगे।

0: और समय एक बात भी बतानी है आपको कि नाम नाम को लेकर कैसे गलत फहमी हो जाती है वो थोड़ी देर के बाद। लेकिन एमएल विश्वकर्मा ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि मोबाइल डज नॉट ओपन विद द रॉन्ग पासवर्ड, सो हाउ कैन हेवन्स डोर बी ओपन्ड विद रॉन्ग कर्मा। अगर आपके अमाल बुरे हैं तो जन्नत का दरवाज़ा कैसे खुलेगा, जब एक मोबाइल का नहीं सही पासवर्ड अगर गलत पासवर्ड है तो वो नहीं खुलेगा। बिल्कुल एमएल विश्वकर्मा, आपने सही कहा है और आपके दोनों आंसर्स भी दुरुस्त हैं, बहुत खूब। दिनेश भट्ट कुछ कहना चाहते हैं, गालिबन क्रिकेट।
1: रवीना जी वालेकुम सलाम, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज का पहला मैच वेस्ट इंडीज ने 257 रन से जीत लिया है, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का दूसरा मैच तीसरा मैच न्यूजीलैंड ने जीत लिया है, न्यूजीलैंड ने सीरीज जीत लिया है। कल आईसीसी वुमन वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को हराया और फाइनल में पहुंच गया। आज आईसीसी वुमन क्रिकेट टीम कल सेमीफाइनल का मुकाबला है इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका। लिसनर से आप पूछिए कि कौन सी टीम फाइनल में पहुंचेगी, इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका।
0: क्या बात है, पहली बार दिनेश भट्ट ने कोई सवाल किया है, इंग्लैंड के साउथ अफ्रीका, इनमें से एक चुनिएगा और बताइए कौन फाइनल में पहुंचेंगे। एक्चुअली मुझे तो इसका कुछ खास नहीं पता, लेकिन आपको तो है ना, आप तो देखते हैं। अच्छा, अमीर अली राणा, परवीन जी कोई नहीं मेरा इस दुनिया में, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स, ये तलत का अमीर अली राणा उसका बेहतरीन गाया हुआ गाना है तलत महमूद का, और मुझे भी बहुत ही पसंद है।
2: प्रवीण जी कोई नहीं मेरा इस दुनिया में, ये गाना फिल्म दाग का है, 1952 की मूवी है, जिसको असद जयपुरी ने लिखा है और जिसकी धुन शंकर जय किशन ने बनाई है। ये गाना दिलीप कुमार पे फिल्मा गया है और जिसके साथ नूतन भी थी, और ये गाना तलत महमूद ने गाया है। ये ब्यूटीफुल मार्वलस गाना सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: क्या बात है, दिल खुश हो गया है प्यार अली भाटिया का। ऑफ कोर्स यू लव दिस पीरियड ऑफ सॉन्ग। साउथ अफ्रीका विल एंटर द फाइनल्स, मैं कहती हूँ कल्पना, दे विल डिफीट ऑस्ट्रेलिया एंड विन द वर्ल्ड कप। अल्लाह, साउथ अफ्रीका, ठीक है। वैसे साउथ अफ्रीका समय ना, आपको पता ना कैसे दूसरे अफ्रीकी देशों से आए हुए माइग्रेंट्स के साथ क्या कर रहा है साउथ अफ्रीका, हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ भी कुछ आए हैं, क्योंकि वो जो हैं विदेशियों पर हमले हो रहे हैं, उनको कत्ल किया। साउथ अफ्रीका इन्हीं बातों के लिए जाना जाता है। अच्छा समिन, मैंने आपको कोलकाता की खबर

और सोहरवर्दी, दो थे सोहरवर्दी। कत्ल तो हुसैन सोहरवर्दी ने करवाया होगा शायद, ये बेचारे तो डॉक्टर थे जिनके नाम पर ये सड़क थी, वो तो डॉक्टर हसन सोहरवर्दी थे, दूसरे हुसैन सोहरवर्दी थे, ये तो हसन सोहरवर्दी थे। अब ये गलती का इतराफ करते हैं कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन गलती से उस सोहरवर्दी के नाम को काट दिया गया है, हालांकि उसकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा थी, स्कॉलर थे, पोएट थे।

और फिल्म थी कोहिनूर, कमाल का जबरदस्त संगीत। और अमीना फ्रॉम मैनचेस्टर, आपने कहा अभी अभी आपने तलत का गाना सुनाया, कोई नहीं मेरा इस दुनिया में, तो कहते आपने सुना था पहला शेर उनका क्या था, चांद एक बेवा की चूड़ी की तरह टूटा हुआ। बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन है, आई ऑलवेज थिंक, ये हसरत जयपुरी ने लिखा था। अमीना ग्रेट। और चंद्रिका वासंत गोसाई आप इंजॉय कर रही हैं, और ब्यूटीफुल कोट है, द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स यू कैन नेवर वेयर, द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग यू कैन नेवर वेयर इज कॉन्फिडेंस। ओके, समीन कृष्ण सरवे ने लंदन से कॉल किया है, उन्होंने कहा है कि देखें उस ज़माने में फिल्म देखने का शौक कितना गहरा था, कितना शदीद था। कहते एक फिल्म लगी, 70 का ज़माना था, फिल्म दाग लगी, बरसात का मौसम था, लेकिन मैंने फिल्म देखनी थी, निकल पड़े घर से, बरसात ने वो अपना जोर दिखाया, मेरे सारे कपड़े गीले हो गए जब तक मैं सिनेमा पहुँचा हूँ, गीले कपड़ों से बैठ गया, एसी ऑन था, ठंड लग रही थी, पर समहाउ वो कपड़े सूख गए, 3 घंटे की फिल्म थी। शुक्र है कि आपको न्यूमोनिया नहीं हो गया, वैसे ऐसे ही तो नहीं होता न्यूमोनिया, लेकिन ऐसे लोग मानते हैं। चलिए समीन, ब्रेक से पहले ये

0: जी अश्विन क्या ब्यूटीफुली रिटन है ये पहले तो।
1: जी शिपर जी ये हेमंत कुमार और लता मंगेशकर का रियली फंटास्टिक है, आई मीन
0: हाँ
1: ब्यूटीफुली,
0: क्या सूदिंग गाना है, क्या सूदिंग। तो क्या हेमंत का संगीत था?
1: नहीं ये संगीत था रोशन का।
0: अच्छा वाह क्या बात।
1: और ये लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी।
0: अच्छा
1: फिल्म थी ममता।
0: जी जी जी
1: ममता में दो हीरो थे अशोक कुमार और धर्मेंद्र।
0: हाँ।
1: और सुचित्रा सेन डबल रोल में थी, माँ और बेटी।
0: अच्छा, अच्छा। कमाल की अदाकारा थी सुचित्रा।
1: और ये गाना पर जी अशोक कुमार और सुचित्रा सेन एक गाड़ी में जा रहे।
0: हाँ।
1: नॉर्मल गाड़ी लेकिन घोड़े की गाड़ी।
0: अच्छा
1: हाँ वो गाड़ी में जा रहे।
0: हाँ।
1: और ये गाना बैकग्राउंड में बज रहे।
0: क्या
1: स्क्रीन पे कोई गाते नहीं।
0: अच्छा।
1: ये बैकग्राउंड में बजता है।
0: इसका मतलब उन्होंने एक्सप्रेशंस के साथ सब जाहिर करना है ना।
1: यस यस यस एग्जैक्टली। एंड पर जी फिल्म हिट हुई थी
0: ममता।
1: ममता ममता
0: कमाल है।
1: यस
0: क्या
1: ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मूवी पर जी।
0: थैंक यू
1: थैंक यू
0: अश्विन। और समय खबरों का समय आ गया है।
2: With news from Kenya, Asia, and around the world, this is East FM News, presented by Mark Gitau.
3: Kirinyaga Senator Kamau Murango has been ranked the most outstanding senator in the country according to a survey by Infotrack. Murango scored a 69% approval rating. The top three positions were dominated by leaders from central Kenya, with Nyandarua Senator John Methu coming second at 68% and Murang'a Senator John Nyutu third at 65%. Nandi Senator Samson Cherargei and Kericho Senator Aaron Cheruiyot completed the top five with 64 and 63% respectively. Marsabit Senator Mohamed Chuto was named the most improved senator. Kirinyaga woman representative Njeri Maina has emerged as the best performing woman representative in the country for the second consecutive time, according to a survey by Infotrack. She attained a 67% approval rating ahead of Rael Kasiwai of West Pokot at 61%, while Pauline Longruis of Samburu has been ranked third. The survey cited inadequate funding and limited public understanding of the women representative role as major challenges affecting the women leaders' performance. Funyula Member of Parliament Wilberforce Ondo has proposed automatic voter registration using the National Identity Card database, enduring new registration of IDs to reduce election cost and improve the accuracy of the voters' register. Speaking at an interview, Ondo further called for the automatic removal of deceased persons through integration with civil registration records, arguing that linking government database will eliminate duplication, save billions of shillings and strengthen the credibility of Kenya's electoral system. Police in Kericho have seized more than 200 cartons of suspected counterfeit alcohol during a multi-agency raid in Kapsusa, Belgut sub-county. Officers also dismantled a makeshift distillery used to produce illicit liquor. Belgut Police Commander Davis Koech says investigations are underway to trace and arrest them as the crackdown on counterfeit alcohol continues across the country. Zimbabwe's parliament has passed constitutional amendments extending presidential terms from 5 to 7 years. This move will keep the current president, Emmerson Mnangagwa, in office until 2030. The legislation from parliament marks a major shift in Zimbabwe's governance framework and are expected to have significant implications for the country's political landscape and future electoral cycle.
2: East FM News. East FM, Kenya's premier Asian mix. East FM. Kenya's premier Asian mix. Bemisal Andaz with Parveen Atom.
0: और हम देखते हैं कि पर्दे पर किस किस का मैसेज आया है, पढ़ दें फिर मैं सवाल करती हूँ। और रसीला वन फ्रॉम ममता, ब्यूटीफुल सॉन्ग, बिल्कुल सही आपने कहा। सलमा माशाल्लाह, परवीन जी छुपा लो यूं दिल में प्यार में, वाह क्या गाना था। कहते हैं कि ना भाभी हु शेयर्स द सेम नेम एज माइन, इट्स हर फेवरेट सॉन्ग, आई विश टू डेडिकेट इट दिस सॉन्ग टू सलमा, सलमा टू सलमा। बहुत अच्छे डेडिकेट किया। और परवीन भट्ट आप इंजॉय कर रही हैं गाने, आपको भी वही गाना डेडिकेट करते हैं। और सलाम्स फ्रॉम फ्रॉम दोहा अब्बास, क्या बात है, लिसनिंग एज यूजुअल, अब्बास हैं दोहा में। कमाल है, बहुत अच्छे अब्बास लोधी हैं, कमाल है। वेलकम, आई मीन वेलकम तो हैं ही, वो सुनते हैं रोज़ाना, बहुत अच्छे। सलीम मेहर हैं अब लंदन में, दोहा से लंदन चलते हैं।
4: अस्सलाम वालेकुम प्रेमी जी, सलीम मेहर फ्रॉम लंदन। A person becomes 10 times attractive, not by looks, but by the acts of kindness, love, respect, honest, and loyalty to their show. Have a lovely day, Praveenji, and I would be very grateful if you play a lovely song for my birthday today. Khuda Hafiz.
0: Oh my God, उसने शबीर अहमद कहकर गए थे कि सलीम मेहर की बर्थडे है. मैं लिखकर ये नोट वो दूसरे क्या कहते हैं कि पेपर के साथ वो छुप गया. पर many many happy returns of the day सलीम मेहर आपके लिए. उन्होंने कहा था शबीर अहमद ने कि कोई अच्छा सा गाना मैं करती हूँ, वो वही दुआ है ना जो हमें बहुत पसंद है और आपको भी पसंद आएगी. हैव अ फैंटेस्टिक डे शबीर अहमद, खुदा आपको लंबी उम्र दे. और प्यार अली क्या कहते हैं,
5: प्रवीण जी छुपा लो यो दिल मेरा, ये गाना फिल्म ममता का है जिसको अहमद कुमार और लता मंगेशकर ने गाया है और जिसको मजू सुल्तानपुरी ने लिखा है और जिसकी धुन रोशन ने बनाई है. ये गाना सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया.
0: बात है कमाल है. प्यार अली, प्यार अली के साथ आई हैं कौन और आप हैं जी सैली डार फ्रॉम लंदन. सैली थैंक यू, आपने फॉरवर्ड भेजा है, बहुत अच्छा है. और साथ आए हैं कौन ये पढ़ के सुनाना पड़ेगा क्योंकि ये नलिनी आर शाह का है. नलिनी आई एम एंजॉइंग द प्लेलिस्ट. There's a vast difference between old and new songs. Old songs capture natural human emotions and imperfections. समझ जो हमारे अंदर खामियां हैं ना वो भी पुराने गानों में नजर आती हैं. Modern songs favor technical perfections while old songs were played with real instruments and musicians' interactions. क्या बात है. Older songs preserved unique feelings that gave songs a richer sound. Old songs associated with highly emotional memories. बिल्कुल नलिनी, wonderful जो आपने कहा है. अब क्योंकि सलीम मेहर की बर्थडे है, आप भी उनको ज़रूर विश करें. रोज़ाना सुनते हैं प्रोग्राम के बड़े लॉयल लिसनर हैं बेमिसाल के. उनके लिए एक दुआ

0: और इससे बड़ी दुआ समीन क्या हो सकती है किसी के जन्मदिन के मौके पर बहुत ही ब्यूटीफुल और नूर जहां की आवाज में हो। यहां पर और भी मैसेजेस आए हैं, पहले तो टीना बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रमेश हरिया ने लिस्ट भेजी है जो कि रेड इंक में नजर नहीं आ रही, लेकिन उन्होंने कहा सलीम मेहर को हैप्पी बर्थडे। अच्छा जतिंदर उनकी,
1: हेलो प्रीत जी, गुड मॉर्निंग। कहंदे ना गीता बुरी है ना कुरान बुरा है, ना गीता बुरी है ना कुरान बुरा है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, ना खुदा बुरा है ना भगवान बुरा है, बस दिमाग विच जो बढ़िया नफरत दा शैतान बुरा है, बस दिमाग विच जो बढ़िया नफरत दा शैतान बुरा है। थैंक यू जी।
0: दिमाग में है नफरत का शैतान, बिल्कुल सही जतिंदर, वेल डन। अमीना फ्रॉम मैनचेस्टर कहते हैं मैनचेस्टर से भी ग्रीटिंग्स हैं फ्रॉम अमीना टू सलीम मेहर, बहुत अच्छे, दैट्स गुड। और हैप्पी बर्थडे सलीम मेहर सोनल मोदा की जानिब से, थैंक यू सोनल। प्यार अली भाटिया,
2: प्रवीण जी खुदा कभी ना करे ये गाना फिल्म पाकिस्तानी फिल्म अनजाना का है जिसको नूरजहान ने गाया है, ये ब्यूटीफुल गाना सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: राइट, और सलीम मेहर को हैप्पी बर्थडे। जयश्री थैंक यू आपने फॉरवर्ड जो भेजा है। और अब जो गाना है समिन पुराने जमाने का, मुझे लगता है ये नंदा गाती है।

0: मंजुला गोरसिया कहती है इस फिल्म में नंदा गुड़िया लगती है, बहुत प्यारी थी, अच्छी एक्टिंग भी हुआ करती मंजुला गोरसिया। आपने कहा ये फिल्म भाभी का गाना, जी हाँ भाभी ये दुरुस्त। रितु गुप्ता कहती हैं कि भाई साहब को हैप्पी बर्थडे सलीम मेहर को इन लंदन, हाउ नाइस ऑफ यू रितु। और मैनी हैप्पी रिटर्न्स, मे अल्लाह गिव यू गुड हेल्थ एंड हैव अ ग्रेट डे। साउथ अफ्रीका से आपके लिए ग्रीटिंग आई है सलीम मेहर, शमीम की जानिब से, ग्रेटफुल टू यू शमीम। और यहाँ पर है सना, सना काना कहती मेरी जानिब से भी सलीम मेहर को मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, इन लंदन है वो। अमीर अली राना, दिस सॉन्ग वॉज पिक्चराइज ऑन नंदा इन द मूवी भाभी, जी अमीर अली राना। और मंजुला विश्वकर्मा,
1: अरे वाह परवीन जी, ये जो अभी आपने गाना लगाया टाइल लगा के, बाप रे मैंने पता नहीं कितने सालों बाद सुना है ये गाना, और हल्का हल्का सा याद है कि शायद नंदा और जगदीप पर फिल्माया गया है, पक्का नहीं मालूम मुझे, पर बहुत दिनों बाद मैंने ये गाना, बहुत सालों बाद ये गाना सुना है, मज़ा आ गया। परवीन जी, सलीम मलिक जी के लिए मैं बोल रही हूँ, आज के मुबारक दिन पर बस यही दुआ है हमारी, खुशियों से भर जाए जिंदगी आपकी, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मेहरबानी मंजुला विश्वकर्मा। और टीना ने भी विश किया है सलीम मेहर को मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। सलीम, अब ये नाम लिख लीजिएगा, तमाम ने जिनने आपको ग्रीट किया, जब इनकी बर्थडे होगी आपने इनको ग्रीट करना है। समिन, 10,000 स्कूटर्स एक साथ एक जगह पे आ जाएं एक शहर में, कभी देखा है आपने? 10,000 आए हैं रोम में सालगिरह मनाने के लिए, किसकी? 80 साल हो गए हैं एक स्कूटर को। इटली आने वालों में इंग्लैंड से, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से, सैन फ्रांसिस्को से, फिलीपींस से लोग आए अपनी अपनी स्कूटर लेकर। इस स्कूटर के चाहने वाले बेशुमार हैं दुनिया में, सब बहुत पसंद करते थे स्कूटर को लोग। 1953 में ग्रेगरी पेक और ऑड्री हेपबर्न की एक फिल्म आई थी, इस फिल्म में ग्रेगरी पेक ऑड्री हेपबर्न को इस स्कूटर पे घुमाने ले जाता है, रोमन हॉलीडे थी फिल्म। खैर मुझे इस स्कूटर का नाम बता देंगे, स्कूटर का नाम था 0701 106 106।

कुछ कह रहे थे आशा और मुकेश, कमाल का डुएट। असल में ये जो टू व्हीलर की मैं बात कर रही हूँ, आप मुझे नाम दे रहे हैं, सबसे पहले कृष्ण सरोवर ने दिया है, करेक्ट है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 1946 से अब तक 20 मिलियन टू व्हीलर्स इस स्कूटर, ये स्कूटर बिक चुकी है इस तादाद में, 20 मिलियन, 2 करोड़। तो अब चलते हैं किसके पास, सलीम मेहर की बर्थडे मनाई जा रही है, तो सैली डार इन लंदन, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैव अ ग्रेट वन, बहुत शुक्रिया। अमीर अली राना, हैप्पी बर्थडे टू सलीम एंड ऑल्सो करेक्ट आंसर अमीर अली, ये करेक्ट है आपका। कपिला डेंगरा समिन, अरसे के बाद कपिला ने मैसेज किया, बिल्कुल कपिला डिंगरा, ये करेक्ट आंसर है आपका, वेल डन। और सलीम मेहर को प्यार अली ने भी विश किया है। सोनल मोदा, स्कूटर का नाम बिल्कुल सही, रितु आपने जो नाम दिया वो नहीं है, ओके। और अब सत श्री अकाल परमिंदर चाना फ्रॉम किसुमू, नहीं ये वो नहीं है परमिंदर, ये आपका स्कूटर का नाम सही नहीं है। रसीला, करेक्ट आंसर, स्टाइलिश मेटालिक ग्रीन स्कूटर, सर्व्ड द गेटअवे व्हीकल फॉर हिम, सर्व्ड एज अ गेटअवे व्हीकल फॉर हिम एंड द कोस्टा। ऑड्री हेबन की बात करें, ग्रेगरी पेक, ओ रसीला थैंक यू, करेक्ट आंसर है आपका। मंजुला विश्वकर्मा, बिल्कुल सही जवाब है। और बॉबी ओस्मान, गॉड गिव्स अस टू गिफ्ट्स एवरी डे, वन इज अ चॉइस, द अदर इज अ चांस, द चॉइस ऑफ अ गुड लाइफ एंड द चांस टू मेक इट द बेस्ट। बॉबी दैट वाज गुड। और आपके पास आशा भीमानी आई हैं, करेक्ट आंसर लेकर। दिनेश पोपट कहते हैं स्कूटर का नाम ये था, आई हैड अनदर स्कूटर, आपने नाम बताया है किसुमू में, लैम्बरेटा, ओके, only for 1 year, I had a minor skid and fell, realized it's not safe, sold it the same week and returned the money to my dad with a profit of 500 shillings. क्या बात है दिनेश पोपट, समझ, हाँ कोई गिर जाए किसी साइकिल से स्कूटर से तो ऐसा ही होता है कि आप फिर उसको यूज नहीं करना चाहते। Enjoying your playlist, बहुत अच्छे, सिड कप से दिनेश पोपट। अच्छा, आपके बाद दिनेश पोपट के बाद आपने कहा है, करेक्ट आंसर दिया कल्पना, आई हैव सीन दिस स्टोरी, आई यूज टू राइड अ डैश स्कूटर व्हाइल इन कॉलेज इन इंडिया। तो कल्पना मैं यही कहने लगी थी, इंडिया में इस स्कूटर का बहुत बड़ा बाजार था, बहुत लोग इसको इस्तेमाल करते थे। इट वॉज, आपने कहा इट वॉज क्वाइट हैवी and the stand was difficult to pull and park, I was of average build and found it very difficult to do so, I used to take help of some bystander. अच्छा, इतनी भारी थी, आपने कहा इसको खड़ा करना भी मुश्किल था, किसी राहगीर की मदद लेनी पड़ती थी। Some of my friends used to tease me, if you can't put the stand, why did you get it? कहते इतनी स्कूटर इनकी पसंदीदा थी और यादें ताज़ा कर रही थी अपनी, कल्पना वंडरफुल। और सना काना, नहीं ये गलत है, मीरा चावड़ा, हेलो गुड मॉर्निंग टू यू एंड योर बेमिसाल अंदाज, विशिंग सलीम मेहर मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मीरा हाउ काइंड ऑफ यू, अ वेरी हैप्पी एंड हैप्पी ब्लेसड डे फॉर सलीम मेहर, ये मेरी दुआ है, गॉड ब्लेस हिम विद गुड हेल्थ, बहुत शुक्रिया मीरा। और आपने आंसर करेक्ट दिया है, प्यार अली भाटिया का, नहीं नॉट प्यार अली भाटिया, सैली डार का, बिल्कुल करेक्ट है। और रसीला, आप रसीला शाह ने भी कहा है, क्यों ना सलीम मेहर को सालगिरह मुबारक कहा जाए, बहुत अच्छे। और रितु गुप्ता ने करेक्ट आंसर दे दिया है। साथ चलते हैं परमिंदर चाना के, बजाज नहीं है, गलत है, मिसेस धंजल करेक्ट आंसर।

और दो और ग्रीटिंग्स आई हैं सलीम मेहर के लिए. पहले तो लंदन से क्रिश्चियन सर्वे ने कहा है कि मेरी मैंने एक बोतल रखी हुई है सलीम मेहर के लिए. आज उनकी सालगिरह है तो बोतल खुलेगी विस्की की. अच्छा, अब मैं चाहती हूँ कि सलीम मेहर जवाब दे दें क्रिश्चियन सर्वे को. पोलाइटली है, अच्छी तरह जो भी कहना है आपने. तबस्सम काजम भट्ट, आपने कहा है सलीम मेहर हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू बी ब्लेस्ड. सना काना, बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर. और मुझे बताया है कृष्ण सर्वे ने कि बजाज ने ही बनाई थी. सो इसका नाम आपको मतलब कि बजाज है, मतलब कि गलत नहीं है. ओके, शीतल शाह, वेल डन, आपने सही जवाब दिया है. जिस जवाब से जिस नाम से वो जानी जाती थी स्कूटर, आपने सही दे दिया. और सामने आंसर क्या था? वेस्पा, वी ई एस पी ए. उस जमाने में क्या 80 साल से लोग इस स्कूटर को जानते हैं, मशहूर है.

0: और आरफा फ्रॉम मोंगाटा रुंगाई कहती हैं ये कहां से इतने ब्यूटीफुल गाने चुन चुन के लाई हो आज समन बात ये है कि आज भी मैंने वो गाने हैं जो कि कई साल नहीं आपने सुने होंगे आरफा कहती हैं वो गाना बेदर्द जमाना तेरा दुश्मन है तो क्या है बहुत ही अच्छा था और आपको टाई लगा के माना बन गए जनाब हीरो वो भी याद है फिल्म भी आपने देखी थी आरफा और शनाज बट फ्रॉम तंजानिया आपने सही जवाब दिया है जवाब था वेस्पा और चलते हैं रितु गुप्ता के पास और वो क्या कहती हैं
1: रमीन जी नमस्कार इसलिए तो मैं आपको ऑसम बोलती हूँ अब पता चला कि आपका ये यंग रहने का क्या राज है क्योंकि आप पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ढूंढते रहते हो बीबीसी न्यूज तो मैं भी देखती हूँ प्रवीण जी तो आप पता नहीं हमारे लिए इतनी मेहनत करते हो तो आप इसलिए अपने दिमाग को भी एक्टिवेट रखते हो हमसे क्वेश्चन पूछते हो तो इसलिए लगता कि आप हमको भी यंग देखना चाहते हो क्योंकि हमारा भी दिमाग इसमें एक्टिवेट रहता है ना भाई जब आप क्वेश्चन पूछते हो मेरे को तो सबसे ज्यादा आप जब क्वेश्चन पूछते हो या कोई टॉपिक डिस्कस करते हो ना वो ही मेरे को सबसे ज्यादा मजा आती है और क्या बोलूं मैंने बोला कितने लोग आपको आंसर देते हैं आप बताओ आप लिख लेते हो ना कि उसने आंसर दिया या उसने गलत दिया क्योंकि इतना दिमाग में रखना बड़ी हैरानी की बात होती है लेकिन मैं तो बोलती हूँ भगवान आपको इतनी इतनी खुशियां दे आपको इतनी तंदुरुस्ती दे

0: बयान नहीं कर सकती। और सलीम भाई को भी भगवान बहुत बहुत तंदुरुस्ती दे, अच्छी सेहत दे, क्योंकि वो पीछे भी गए दिनों काफी बीमार थे ना। रितु गुप्ता,
1: बात है रितु। रितु हाँ, ये आपके लिए एक सवालात ढूंढने में मेरा बहुत वक्त चला जाता है। मुझे आम आम यो घटिया घटिया सवाल नहीं पूछने, मुझे वो पूछने जिनके साथ आपके इल्म में, आपकी शिक्षा में इजाफा हो। तो ये मेरा काम जरा लेता है वक्त, काफी काफी ले जाता है वक्त। और कई सवाल तो मैं लिख लिख कर पाल पाल कर वापस रद्दी की टोकरी में फेंक देती हूँ। और यस, पर आप जैसे लिसनर्स भी तो होने चाहिए ना। कुछ लिसनर्स तो ना सवाल सुनेंगे ना जवाब देंगे। आप तो सुनते हैं, आप जवाब ढूंढते हैं, इसका मतलब कि आपका दिमाग बड़ा तेज है, आपको शौक है इल्म का, नॉलेज का, ज्ञान का शौक होना चाहिए ना। शौक वाले लोग, आई एम लकी कि आप हैं हमारे साथ, बहुत लकी हूँ। और जिनकी आज बर्थडे है उनका क्या कहना।
2: प्रवीण जी अस्सलाम वालेकुम। सो वेरी स्वीट ऑफ पाजी टू ओपन द बोतल। आई हैव अ ड्रिंक ऑन मी एंड प्लीज टेल पाजी टू सेंड मी द बिल, आई विल अकोमोडेट हिम एंड आई एम श्योर ही विल एंजॉय द विस्की मच मोर व्हेन ही सेंड्स मी द बिल। थैंक यू सो मच सर जी फॉर ड्रिंकिंग ऑन माय बिहाफ।
1: क्या बात है, सलीम मेहर एंजॉय कर रहे हैं और अपनी बर्थडे पर। ये नहीं बताया कि जाना कहाँ है, केक कहाँ कटेगा, किस रेस्टोरेंट में जाना है। वैसे तो इनके दोस्तों ने किया होगा एहतमाम बर्थडे का, क्योंकि ये बहुत सलीम मेहर वहाँ एक्टिव हैं, सोशल सर्कल्स में बड़े जाने माने हैं। तो ऑफ कोर्स वहाँ लंदन में इनकी रेडियो पर भी होती होगी, बर्थडे मनाई जा रही होगी।

उस समय हुआ क्या गए दिनों, हवाई जहाज में लोग बैठ रहे हैं, अपनी अपनी सीट्स पे जा रहे हैं, तो वहां छोटा सा हंगामा सा शुरू कर दिया एक औरत ने। मुसाफिर थी औरत, मुझे इस सीट पे नहीं बैठना। वैसे तो समिन आपने कितनी बार सुना है मुझे खिड़की वाली सीट पे बैठना है या मुझे अपने शौहर के साथ बैठना है, तो हवाई जहाज वाला जो होते हैं क्रू समिन, उनके लिए ये बहुत एक समस्या होती है। खैर, कोलकाता जाने वाली हवाई जहाज की परवाज थी, इसमें एक जो मसला खड़ा हुआ वो थोड़ा अजीब था। कहते हैं कि मेरे लिए कोई दूसरी सीट का इंतज़ाम करो, औरत कहती है। क्यों? तो जवाब आता है कि मैं दो मर्दों के बीच नहीं बैठूंगी, मैं दो पुरुष दाएं बाएं मेरे हों, मैं नहीं बैठ सकती हवाई जहाज की, मैं नहीं बैठूंगी, मेरे लिए करो, मैंने टिकट के पैसे दिए हैं, ये मेरा हक। समझना, कोई मर्द नहीं कहेगा कि मैं दो औरतों के बीच बैठ नहीं बैठूंगा, वो कहेगा कि दो और ले आओ। लेकिन औरत ने ये क्यों डिमांड की है? आपको लगता है कि ये औरत की डिमांड या रिक्वेस्ट, समझ लो डिमांड ही कर रही थी, सही है कि नहीं? क्या जब आप बस पर या ट्रेन पर बैठते हैं तो आपको हक होता है कि आप पूछें, आप मांगें कि मुझे इधर नहीं बैठना, इसके साथ नहीं बैठना, उसके साथ नहीं बैठना? इंग्लैंड में जब अंडरग्राउंड में आप जाते हैं, कहीं भी मिल जाए आपको सीट बैठना ही पड़ता है, और दाएं बाएं आपके मर्द होंगे। तो मुझे बताइएगा कि क्या ये कोलकाता जाने वाले जहाज में इस औरत की ये मांग सही थी कि नहीं? क्या औरत को मांग करनी चाहिए इस तरह की, नहीं बैठना चाहिए दो मर्दों के बीच, या क्या होना चाहिए था, क्या करना चाहिए अमले को? 0701-106-106। और रमेश हरिया की फरमाइश।

0: West FM, Kenya's premier Asian mix.
1: Krishan Sarove कहते हैं मुझे लगता है ये औरत दो मर्दों के बीच इसलिए नहीं बैठना चाहती क्योंकि इसको infectious disease हुई हुई है. अगर वो बैठ जाती है तो उनको infect कर देगी. अच्छा, okay. जतिंदर इतनी खुश हैं, खिल खिला के मुझे बताती हैं कि जब जब बाहर आई मैंने request करना ही था, आपने आज सुना दिया गाना, बड़ी खुश हैं. और सलीम मेहर को हैप्पी बर्थडे कहा है जतिंदर ने. अच्छा, अब यासर के पास चलते हैं. उन्होंने चंद मिनट पहले कहा था कि जुलाई द फर्स्ट इज़ हाईली सिग्निफिकेंट डेट इन इंडियन हिस्ट्री. इंडिया में क्या मना रहे हैं आज के दिन, पहली जुलाई, नेशनल डॉक्टर्स डे. अच्छा, एंड नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे. अच्छा, ये दोनों डेज इंडिया में मनाए जा रहे हैं. यासर, बहुत शुक्रिया. आपने ये भी कहा है कि सलीम मेहर को यासर की जानिब से मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. हमेशा खुश रहो. बहुत अच्छे यासर. रसिला वुड हैव रिमेंबर्ड वेस्पा इफ नॉट फॉर यू. ओके, कैनेडा सेलिब्रेशन वन फॉर यू. या ओके रसिला, ठीक है. मिसेस धंजल.
2: हेलो प्रवीण जी, गुड मॉर्निंग. मिस धंजल है प्रवीण जी. प्रवीण जी आओ, अपनी कुछ लाइनें हो जाए. कहते हैं फ्रेंडशिप बड़े ध्यान से कीजिए, कभी कर लो तो उसे पूरी ईमानदारी से निभाइए. थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट वन, कोई किसी को सिखा नहीं सकता, कोई किसी को सिखा नहीं सकता. जब खुद इच्छा जागती है तो इंसान सीख जाता है. थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड डे.
1: या आपके दिल में ये अरमान होना चाहिए कि आपने कुछ जानना है, आपने अपनी नॉलेज गेन करनी है. दैट्स अ बेटर वे ऑफ. चंद्रिका वासंत गोसाई, माय फेवरेट सॉन्ग्स. ओके सोनल मोदा कहते हैं रितु जी यू आर राइट, प्रवीण जी इज डूइंग सच हार्ड वर्क, वी रियली अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क. सोनल थैंक यू सो मच, इवन यू आर ऑलवेज ट्यून्ड इन और अच्छी तरह से आप सुन भी रही होती हैं. ओके, और अब चलते हैं रितु के पास. क्या कहती हैं रितु?
3: प्रवीण जी आपको पता ना, सीट पहले बुक होती है तो पहले ही नंबर दिए जाते हैं. इस नंबर पे अगर वो मतलब शांतिपुर को क्रू से बात करें कि अगर हो सके तो मेरी सीट बदल दो, तो अगर वो क्रू के हाथ में हो, कोई बदल सकता हो तो बदल देनी चाहिए. लेकिन इस औरत को हंगामा में नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे ना प्लेन में बाकी पैसेंजर को भी ना ऑब्स्टेकल फील होती है. तो जैसा भी हो सफर कर लेना चाहिए. कुछ कुछ औरतें ना नाटक भी बहुत करती हैं. ठीक है वो अनकंफर्टेबल औरत, हर औरत दो मर्दों के बीच में अनकंफर्टेबल फील करती है तो, लेकिन जैसे सिचुएशन हो उसको हैंडल करना भी तो चाहिए ना. भाई मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी सीट पहले ही बुक हो गई है. तो मेरे हिसाब से तो उसको साथ समझौता करना चाहिए था रितु गुप्ता, क्योंकि इसमें क्रू कुछ नहीं कर सकता. अगर सीट कोई वो बदल सकता तो बदल सकता, अगर नहीं कोई भी नहीं कोई चेंज करने को तैयार होता तो इस हिसाब से कॉम्प्रोमाइज करना ही चाहिए रितु.
1: लेकिन रितु सवाल है कि क्या वजह ठीक है उसका, रीजन फॉर चेंजिंग हर सीट, क्या वो रीजन ठीक है कि इधर भी मर्द है उस तरफ भी मर्द, मैं नहीं बैठूंगी. आपने कहा है अनकंफर्टेबल हो सकती है औरत. या दैट इज अ वेरी गुड रीजन कि कई बार ऐसा होता है कि दाएं बाएं. अच्छा, गुड मॉर्निंग प्रवीण जी. द लेडी डिड नॉट हैव कॉन्फिडेंस इन हर सेल्फ एंड इट सीम्स शी वॉज ट्राइंग टू बिलिटल द मैन सिटिंग नेक्स्ट टू हर. एनीवे, इन मोस्ट केसेस पैसेंजर्स हैव द ऑप्शन ऑफ चूजिंग सीट्स बिफोर हैंड, चेकिंग दम बिफोर चेकिंग इन. शी कुड हैव रिक्वेस्टेड द चेक इन डेस्क स्टाफ टू अलॉट हर अ सीट ऑफ हर चॉइस. मिसेस गौतमा, जब तक वो टेलीफोन या वहाँ जाकर आप कहते हैं ना, वो कहते हैं ऑल सीट्स हैव बीन टेकन. पर ये वजह मिसेस गौतमा, इज इट द राइट रीजन फॉर हर टू रिफ्यूज दैट सीट? वैसे तो कहते हैं ना कि मैं शीशे खिड़की के पास बैठूंगी, या कहते हैं कि मैं अपने बेटे के साथ बैठूंगी, तो वो तो ठीक है पर जब आप कहते हो कि दो मर्दों के बीच नहीं बैठूंगी
4: सलामकुम परवीन मैं परखंदा शेख बोल रही हूँ मैंने ये आपका मौजू सुना है परवीन मुझे लगता है कि लोगों को इजाजत होनी चाहिए कि सबके साथ ट्रैवल करो देखो हम आज की दुनिया में हम ये नहीं कह सकते कि मर्द जो साइड में बैठे हैं और औरत ये ऐसे बैठती जब हम मुंबई से जाते हैं हम ट्रेन में बैठते हैं सब मिक्स मेजोरिटी है पर वी नाउ शुड वी शुड बी ओपन माइंडेड कभी आप गंदे ख्याल लेकर आएंगे तो आप गंदी सोच में सोचेंगे कभी आप ऐसे नहीं सोचेंगे तो आप बहुत अच्छा फ्लाइट करेंगे पर वी मैंने कितनी दफा फ्लाइट किया है लेकिन आई सिट विद गोरो सब रेशियल मिक्स मेजोरिटी सो वी शुड बी ओपन माइंडेड अल्लाह हाफिज
1: बिल्कुल सही आपने कहा है फरखंदा कि आप गैर मुल्कों में जाएंगे वहां तो आप नहीं कह सकते कि मैं दो गोरों के बीच नहीं बैठूंगी है ना ओके इट इज सो बैड व्हेन यू बुक योर टिकट्स जयश्री कहते हैं यू शुड से इट देन एंड नॉट क्रिएट अ रकस लेटर जयश्री करेक्ट और कल्पना ने जो कहा है एक गाने के बाद

0: विंदोशी, लता और मुकेश
1: यस वेरी मच, फिल्म थी अनाड़ी पवन जी।
0: जी जी जी
1: यस, ये पहली बार 1959 में रिलीज हुई थी।
0: हाँ।
1: पर पहली बार राज कपूर और नूतन की जोड़ी क्या बनी।
0: अच्छा, नूतन के साथ है, मुझे लगा अच्छा, नहीं
1: नहीं नहीं, नहीं, नहीं। नूतन के साथ।
0: हाँ।
1: और जोड़ी ठीक बनी और कई भी हिट्स दिए उन्हें।
0: हाँ।
1: राज कपूर नूतन की जोड़ी है तो वो तो नहीं हो सकता।
0: राइट।
1: लेकिन अनाड़ी फिल्म परवीन जी 1959 की ब्लॉकबस्टर हुई थी। यस, एंड स्टोरी थी और म्यूजिक शंकर जय किशन ने कमाल कर दिया था।
0: उफ, क्या कहें इनके बारे में।
1: यस, उनका जो बहुत पॉपुलर गाना था वो सब कुछ सीखा मैं
0: हमने ना
1: सीखी बसी आ रही।
0: हाँ।
1: जो मुकेश ने गाया था।
0: अच्छा।
1: फॉर राज कपूर।
0: okay.
1: वो तो
0: कमाल ही था है। बहुत अच्छे, मैं देखती हूँ अगर मिलता है तो आपके लिए जरूर।
1: थैंक यू
0: ओके जी। चलिए, अश्विन दोषी के साथ भी बात हो गई है। और समीन, अब मैंने यहाँ पर देखना है कि कल्पना ने क्या कहा है। कल्पना कहती है, यू नो, टू मेक सच ड्रामा शी कैन नॉट सिट बिटवीन टू मैन, इज नॉट राइट। हाउएवर इट सो हैपन्स इफ यू गेट अ सीट बिटवीन टू मैन यू विल नेवर सिट कंफर्टेबली। और जो कल्पना ने रीजन दिया, इट मेक्स सेंस। आपने कहा है कि इमेजिन इफ दे आर जेंटलमैन दे विल एडजस्ट, बट इमेजिन इफ बोथ ऑफ देम दीज जेंटलमैन दे केप्ट देयर लेफ्ट आर्म एंड राइट आर्म ऑन द आर्म रेस्ट ऑफ द वुमन, वुमन सीट मेंट फॉर द वुमन, यू हैव नो प्लेस टू पुट योर आर्म्स, क्योंकि इन दोनों ने दाएं बाएं बाजू के आर्म्स पर कब्जा कर लिया है, औरत कैसे बैठेगी। अच्छा, ये तो सही बात लगती है, लेकिन जो मोस्ट इंटरेस्टिंग है वो यासर ने देखा। यासर कहते हैं कि देखो, देयर इज एब्सोल्युटली नो रीजन टू चेंज सीट्स फॉर सच अ पैसेंजर, दे हैव टू लर्न टू एडजस्ट देमसेल्व्स, बट यू नेवर नो, मे बी She was expecting to sit between Shah Rukh Khan and Salman Khan. But then when she came into the aircraft, she saw Amrish Puri and Shakti Kapoor. Kamal hai, kya baat hai. Yeah, sir, this is the best answer I have received so far. Okay, all are not same. She should have requested or told them the staff at the counter when she was getting on board. Ye kaha hai Shamim ne from South Africa. Shabbir Ahmed from London. Wah wah, kya baat hai. Lata aur Mukesh ka gana aapne sunaya. Main zara late ho gaya hoon, but I'm listening to Bemisal Andaz. Kya baat hai. चलिए समीन, एक और गाना लता और मुकेश का आगे आपके लिए।

यूसुफ भट्ट ने भी कॉल किया है अपने भाई शब्बीर सलीम मेहर को हैप्पी बर्थडे कहने के लिए बहुत अच्छे मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू सलीम मेहर फ्रॉम यूसुफ भट्ट और अश्विन दोषी ने सुन लिया वो गाना जो उन्होंने याद किया था हमने सुना दिया और यहाँ पर कौन आए हैं ये तो नाइला हैं मेरे ख्याल से और कोई मैसेज अभी तो समिन ये बात है कि ये जो औरत है जो कहती है कि आई डोंट वांट टू सिट बिटवीन टू मेन कोई और भी आदमी वहाँ बैठा हुआ था तो उसने कहा इफ़ आई वर वन ऑफ दोज आई वुड नॉट गेट अप फॉर हर और इफ़ आई वर सिटिंग अराउंड आई वुडंट गेट अप फॉर हर बिकॉज जिस एटीट्यूड से वो आई है शी थॉट शी वॉज एंटाइटल्ड टू अ सीट ऑफ हर चॉइस ये आपका अधिकार नहीं है आप अधिकार छोड़ें और अपने आप को अपना डोंट थ्रो योर वेट अराउंड ये कहा है उस आदमी ने एंड ही वॉज राइट कि ये एंटाइटलमेंट का जो है ना लिबादा वो उतारें फिर हवाई जहाज में जाएं

0: और रितु कहती है कि वो जो आदमी ने कहा है ना कि मैं ना उठता क्योंकि ये डिमांड जो बिल्कुल गैर इखलाकी था उसका हक तो था नहीं, वो अधिकार के साथ आई थी, दम दे रही थी। ओके, अब चलते हैं सलीम मेहर के पास।
1: प्रवीण जी अस्सलाम वालेकुम, सलीम मेहर फ्रॉम लंदन। From the bottom of my heart, I would like to wish each and every one of your lovely listeners for wishing me a happy birthday. You all really made my birthday very special. Plus, my two daughters have arrived from overseas to stay and spend the day with me. Thank you so much and God bless you all.
0: अच्छा, सलीम बहर की दो बेटियां यूनाइटेड स्टेट्स में काम करती हैं, तो हर बर्थडे पर अपने वालिद की वो लंदन में होती हैं। जी हाँ, हैव अ ग्रेट डे सलीम मेहर। आपको नायला ने भी किया है विश और कहा है रम्या वस्ता भैया गाना सुनाया जाए। नायला, वो मैं क्योंकि ना गए दिनों हमारा ये करोगा में गाना था तो बहुत सुना है, आते दिनों में किसी दिन। अच्छा, ये हो गई बात। और अमीर अली राणा, परवीन जी इट वॉज आउटस्टैंडिंग प्ले लिस्ट एंड ग्रेट डिस्कशन, हैव अ ग्रेट आफ्टरनून। अमीर अली राणा, थैंक यू। समन, अमीर अली राणा बहुत ही अच्छे दिल के मालिक हैं। और आगे शहजादी साबा, ज़बरदस्त गाना ऑफ लता, ये जो दास्तां सुनो वाला ब्यूटीफुल, ये तो ये जेम्स आज मैंने काफ़ी इकट्ठे किए हैं। एक और जेम है जुल्फों पर।

और आपको हैरत होगी कि लता के साथ सुमन कल्याणपुर भी हैं। फिल्म गजल है, 1964 की फिल्म, और मीना कुमारी पर ये फिल्म आया गया है। सुनील दत्त और मीना कुमारी की जोड़ी थी फिल्म गजल में। क्या कमाल का था, मुझे लगता है कि मुजरे का गाना था।

क्या दर्द था, क्या सोज था मोहम्मद रफी साहब की आवाज में। समिन, अब मेरा प्रोग्राम यहाँ पर ख़त्म होता है। दो गाने आपके लिए चुने हैं जो आपको पसंद आएंगे, और कल मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अगर किसी लिसनर की सालगिरह हो, उनका जन्मदिन हो, तो ज़रूर कीजिएगा। लेकिन समय होना ये है कि कंट्रीब्यूट करने वाले लिसनर भी हों तो अच्छा लगता है कि हम उनको रिकग्नाइज कर लेते हैं इस तरह से। अब आप कहेंगे कि आप लिसनर हैं, फिर आपके तीन जगह दूर कोई रिश्तेदार हैं, तो फिर नहीं। किसी दिन एक बार किसी लिसनर ने कॉल किया और कहा कि आज काजोल की बर्थडे, उसको विश कर दें। अब मेरे प्रोग्राम को तो वो सुनती नहीं है, और ये मुमकिन भी नहीं है। तो अगर मैं उनको 10 बार भी विश करूं, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू हर, क्योंकि वो तो हमारी बेमिसाल में शामिल भी नहीं है। खैर, जो भी है, मैंने नहीं किया उस दिन, लेकिन आपको सिर्फ बताना है कि अपने गुड लिसनर्स जो हैं, या आपके शौहर हैं या आपकी पत्नी हैं, तो ज़रूर हमें बताएं, उनका दिन हम बना सकते हैं। फ़िलहाल दो गाने सुनिए, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह आपका हामी और नासिर रहे।

0: from Kenya, Asia, and around the world. This is East FM News, presented by Parveen Adam.
1: East FM पे बुधवार की खबरें पहले खबरों की सुर्खियां. InfoTrack का नया जायजा. Edwin Sifuna के सवालात हुकूमत के लिए. South Africa में विरोध रोकने के लिए पुलिस तैनात. अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ अदालती फैसले. खबरें तफसील से. किरिनियागा के कमाऊ मुरांगो को बेहतरीन सेनेटर घोषित किया गया है. इन्फोट्रैक के जायजे में इन्हें 69% रेटिंग दी गई. मुरांगा और न्यांडारुआ के सेनेटर्स नंबर 2 और 3 पे आए कारकर्दगी को लेकर. 2026 के सबसे काबिल पार्लियामेंट के सदस्य बाबू ओविनो रहे. दूसरे नंबर पर काबुचाई के जोसेफ कलासिंगा थे. नैरोबी सेनेटर एडविन सिफुना ने सदर रूटो सरकार की कारकर्दगी पे सवाल उठाए हैं. क्या जनता का रहन सहन बेहतर हुआ है? महंगाई पे काबू नहीं पाया गया. काउंटी अस्पतालों को बिलियंस देने हैं. स्कूल कैपिटेशन फंड फराहम नहीं की जा रही. एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर हाना कियारिये ने कहा है कि खेती बाड़ी में युवा पीढ़ी शौक नहीं रखती और ना ही निवेश करना चाहती है, इसलिए कि पानी की तंगी मुसलसल रहती है. बोर होल्स और इरिगेशन सिस्टम्स के लिए रकम नहीं है जवानों के पास. आलमी खबरें. हजारों पुलिस अफसरान तैनात किए गए साउथ अफ्रीका में, जहां शहरी विदेशियों के खिलाफ मजाहरे कर रहे हैं. जिनके पास सही कागजात नहीं हैं, उनको मुल्क छोड़ने का गैर सरकारी हुक्म दिया गया है. ज्यादातर अफ्रीकी ममालिक से आए माइग्रेंट्स वापस लौट रहे हैं. 25,000 साउथ अफ्रीका छोड़ चुके हैं. सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका के राष्ट्रपति के हुक्म को मुस्तरद कर दिया है कि अमेरिका में पैदा हुए बच्चों को सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी. ये उनके लिए जिनके माता पिता अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं. अदालत ने कहा है कि शहरियत का हक ऑटोमेटिक है 150 बरसों से. सदर ट्रंप इस फैसले को बदलवा नहीं सकते. और सेनेगल की पार्लियामेंट ने नया कानून पास किया है जिसके जरिए सदस्यों के इख्तियारात बढ़ाए दिए जाएंगे और राष्ट्रपति के कम कर दिए जाएंगे. सेनेगली सदर बासिरू फाय और पार्लियामेंट के स्पीकर के दरमियान खींचातानी चल रही है. पार्लियामेंट के बाहर जनता ने एहतजाज करना शुरू कर दिया है. यूनाइटेड किंगडम में एनएचएस की मैटरनिटी सुविधाओं की निंदा हो रही है. हुकूमत तैयार है माओं को दी जाने वाली सहूलतों को मुकम्मल तौर पर बदलने के लिए. 1,000 मिडवाइफ्स को भर्ती किया जाएगा. इमरजेंसी मैटरनिटी केयर के नियम भी बदले जाएंगे. और अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जैरिड कुशनर दोहा पहुंच गए हैं, मगर कतर के विदेशी तर्जमान का कहना है कि ईरानी वफद के साथ बातचीत नहीं होगी. वहां इजरायली वजीर दिफा यानी डिफेंस मंत्री ने कहा है कि यहूदी फौज को अमेरिका ने लेबनान में रहने की इजाजत दी है. ये थी आज की खबरें. मैं हूं परवीन आदम.
0: Your favorites from the 90s.
2: Mera dil bhi kitna pagal hai.
0: 2000s.
2: Dil duba.
0: And today. East FM, Kenya's premier Asian mix.

दिल मेरा पत्थर का ब्रेक नहीं कर सकती गाने हेटरों के मुंह पे जाके बजे बूम क्लियर है विजन मेरी आई डोंट नीड नो ज़ूम ऋतिक नहीं फिर भी मचेगी धूम दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम

बेबी दे देगा तभी तो पार्ट शक कोई टेस्ट नहीं करता आमा हासला A1 लाइफस्टाइल A1 आई मुझे ना सिखाओ घंटे पे फेम क्योंकि बस एम जो जलते हैं उन्हें और जलाओ हिट